ये अवधपुरी रघुवंश में फूटी के कैसी जा रानी, अवधपुरी।

मनो से भजलो रे हरी, तनो से भजलो रे हरी, राम नाम है जग में।

उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी राम नाम है जग में।

ए अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

आँखों भजलो प्यारे

भजन करो हरि जगत करतार, भजन करो हरि जगत।

करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि।

0: चुभकर बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, आपके अपने रेडियो साथी वर्षा
2: और आपके अपने रेडियो साथी मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं
1: कार्यक्रम आजीविका में।
2: और आजीविका में दोस्तों, हम अपने युवा साथियों के लिए, हम अपने किसान साथियों के लिए इन ऐसी बातों को लेकर आते हैं इस आजीविका कार्यक्रम में, जो उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है।
1: जी हाँ साथियों, जैसे कि हमारे सभी साथियों के लिए जो रेडियो सुन रहे हैं इस समय पे, उन सभी के लिए बहुत अच्छी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए हमें और क्या क्या नए नए तरीके करने चाहिए।
2: बिल्कुल वर्षा, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और इसी क्रम में हमने चूंकि बात की है डॉक्टर महेश चंदी से, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे युवा साथी एक ऐसा व्यवसाय है, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, इसको किस तरीके से कर सकते हैं और इससे अपनी आजीविका को, अपनी आय को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं।
1: जी हाँ, साथ ही साथ मधुमक्खी पालन के साथ आपके पास और अच्छा आइडिया भी होगा कि मधुमक्खी पालन को हम और अच्छे स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं, इसका और बड़ा व्यवसाय कैसे बना सकते हैं, ये आइडिया आपसे ही निकल कर आएगा।
2: बिल्कुल, और इसको करने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत पड़ती है, कैसे इसको मधुमक्खी पालन करके हमारे युवा साथी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा की है। तो वर्षा जी, हम अपने डॉक्टर महेश चंद जी की बातचीत को सुन लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हमारे युवा साथी मधुमक्खी पाल के किस तरीके से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: जी हाँ मनीष जी, तो देर नहीं करते हैं साथियों, हम चलते हैं सीधा डॉक्टर जी के।

बेरोजगारी है, कितनी मेरी जनसंख्या बढ़ रही है, घर परिवार में हर किसी को नौकरी मिल पाना मुश्किल है। तो अगर मेरे घर के नौजवान बच्चे हैं, भाई हैं, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, अगर वो अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो मधुमक्खी से संबंधित कुटीर उद्योगों में आए, उनको अपनाएं। इसमें कुछ बिंदु हैं कि कौन कौन से कुटीर उद्योग हैं, अभी मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर कुटीर उद्योग पे काम किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। देखिए किसान भाई, जैसे मोम का व्यवसाय है, मोम वो मोम नहीं है जिससे मोमबत्ती बनती है, ये शुद्ध मोम है, ये और कहीं से नहीं होता है, ये मधुमक्खी के शरीर से, उदर से, जो मधुमक्खी के अंदर जो मोम ग्रंथियां होती हैं उनसे विकसित होता है और उन्हीं से निकलता है, इन्हीं से मधुमक्खियां अपना शहद बनाती हैं। जो मेरे किसान भाई हैं या जंगल में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई हैं, शहद निकालने के लिए वो पूरा छत्ता तोड़ देते हैं और उस छत्ते से शहद तो ले लेते हैं और जो उसका सबसे कीमती है मोम है उसको वो या तो फेंक देते हैं या 2-4-10 रुपए किलो में किसी को बेच देते हैं। वास्तविकता इसकी कीमत भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में, हर जगह 200 रुपए किलो से कम नहीं है। अगर मेरे किसान भाई मोम का कुटीर उद्योग अपना लें और जो भी मधुमक्खी पालने वाले हैं उनसे जा जा करके वो मोम ले आए, घर में उसको पका लें, शुद्ध कर लें, पकाने में इसमें कोई तकनीक नहीं है, एक भगोने में डाल करके उसमें पानी डाल लें और मोम डाल लें, इसको खौला लें, इसके बाद में एक दूसरा भगोना लें, मैं दूसरा बर्तन लें, उसमें नीचे ठंडा पानी भर लें, ऊपर कपड़ा बांध लें और वो खौलता हुआ मोम और पानी जो है पानी में खौलाया है उसको हम उसमें ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल दें तो मोम मोम नीचे चला जाएगा, उसकी गंदगी कपड़े पे ऊपर आ जाएगी, वो हमारा शुद्ध मोम होगा। अगर जो भी कंपनियां हैं पेंट बनाती हैं, जो अच्छे से अच्छे पेंट बनते हैं, जूतों की पॉलिश बनती है, जो श्रृंगारिक कंपनियां हैं, जो कॉस्मेटिक चीजें बनाती हैं, क्रीम पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, इनमें सभी में जो अच्छे कागज बनते हैं, तांस की गड्डियां बनती हैं, जो अच्छे तिरपाल बनते हैं पानी रोकने के लिए, जो मेरी छतरी है जिससे हम धूप और वर्षा से बचने के लिए हम रेनकोट खरीदते हैं, इसमें कुछ नहीं है किसान भाइयों, इसमें सभी में मोम की परत होती है। तो हर जगह मोम की डिमांड है और मोम इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो अगर आपने 20 रुपए 40 रुपए किलो खरीदा और उसको घर में साफ कर लिया, शुद्ध कर लिया, तो आपका 200 रुपए किलो में बड़े आसानी से बिक जाएगा और आपको इसमें एक एक्स्ट्रा पैसा मिलता रहेगा। आप जो भी धंधा कर रहे हैं करते रहें, और जो मधुमक्खी से जुड़े हैं, शहद तोड़ने वाले हैं, उनसे संपर्क करिए और उनसे मोम आप खरीदते रहिए। 20-25 किलो मोम आप आसानी से एक महीने में कर लेंगे और किसी भी कंपनी को आप दे दें, चाहे वो श्रृंगारिक वस्तुएं बनाती हो या किसी पेपर कंपनी में जो अच्छे पेपर बनते हैं, ताश की गड्डियां बनती हैं, इससे कागज चिकना हो जाता है, जहां बरसाती बनती हैं, हर जगह मोम की डिमांड है। आप जूते पॉलिश को देख लें, इसमें 85% वैक्स होता है, आप नेल पॉलिश को देखें, आप लिपस्टिक को देखें, जो अच्छी से अच्छी क्रीम है, लक्मी है, नीविया है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, वैसलीन है, इसमें शुद्ध मोम है और सेंट है और कोई ऐसी चीज नहीं है जी, मेरी त्वचा कोई रक्षा करती है पर्त बना करके, इससे त्वचा पे धूप का असर नहीं होता है और इसलिए इसकी बहुत ज्यादा हमारे घर परिवार में महिलाएं इसका सेवन करती हैं, तो इससे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, तो क्यों ना हम इसमें आगे आए और अपनी बेरोजगारी दूर करें। एक तो ये है मोम का व्यवसाय जो अभी हमने बताया, और मेरे जो बेरोजगार भाई हैं आज नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, घर में बोझ बने हुए हैं, तो वो अगर इन धंधों को अपनाए तो निश्चित है कि उनकी बेरोजगारी दूर होगी और वो अपने परिवार को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं।

भाइयों को जो बेरोजगार है उनको भी वो रोजगार दे सकते हैं। तो ऐसे ये मधुमक्खी से संबंधित कुछ कुटीर उद्योग थे जो जिनसे बेरोजगारी दूर की जा सकती है। गवर्नमेंट के पास में इतनी नौकरियां कहाँ हैं और न सभी को नौकरी मिलती है, लेकिन जो किसान भाइयों के बच्चे पढ़े लिखे हैं वो पंजाब हरियाणा दिल्ली बंबई जाते हैं और वहाँ कमाते हैं और वो सब उनका वहीं खर्च हो जाता है। अगर हम घर में रह करके उन कुटीर धंधों को अपनाएं तो हम पंजाब हरियाणा या घर से पलायन करने की हमें आवश्यकता नहीं है और इससे ही हम अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई। दूसरा व्यवसाय है शहद का, जो आदिवासी हैं जंगलों से जो एपिस डोरसेटा मधुमक्खी है इसका शहद निकालते हैं। जो बड़े बड़े बी कीपर्स हैं मोन पालक हैं जो अपने साइंटिफिक तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं उनसे शहद निकालते हैं। आप उनके संपर्क में आइए, वो आपको शहद 100 रुपए किलो में या इससे कम में, जब आप 10-20 कुंटल लेंगे आप किसी चमनप्राश बनाने वाली कंपनी से संपर्क करें वहां दीजिए या आप अपनी खुद पैकिंग करिए। अगर आप डावर का चमनप्राश लेने जाएंगे, डावर कितनी बड़ी मेरे देश की कंपनी है जो आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करती है, उसके हर प्रोडक्ट में हर दवा में शहद का मिश्रण होता है। जितने भी बच्चों की दवाएं बनती हैं बच्चे कड़वी दवाओं को नहीं खा पाते हैं, इसमें सभी में शहद होता है। तो ऐसे हम शहद का, और अगर आप कभी भी बाजार से खरीदने जाएं तो डाबर वालों का शहद है कम से कम 300 रुपए से 400 रुपए किलो बिकता है, जो उनकी एक 50 ग्राम की सीसी है वो 10 रुपए की मिलती है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, आपको 50 रुपए में मिल रहा है 100 रुपए में मिल रहा है, तो आप उनसे खरीद करके इन कंपनियों को दीजिए तो इसमें आपको महीने में 2-4 हजार रुपए बड़े आसानी से मिल जाएंगे। आप जो भी धंधा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करते रहिए, साथ साथ में इसको भी अपनाइए, देखिए आपको इसमें कितने जल्दी आपकी बेरोजगारी दूर होती है और आपका आर्थिक स्तर, आपकी परिवार का स्तर, बच्चों की पढ़ाई कितने अच्छे ढंग से चलती है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मधुमक्खी से संबंधित कुटीर उद्योग हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए दूसरा कुटीर उद्योग है मोन बक्सों का व्यवसाय। आप मधुमक्खी के बक्से बनाइए, मधुमक्खी के एक बक्से की कीमत अगर आप बना बनाया लेंगे तो ये आपको 1600 से लेकर के 1800 रुपए तक का बनेगा। अगर आप इसको घर में बना लेंगे तो ये इसकी कॉस्ट 800 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। ये एक विशेष प्रकार की लकड़ी का बनता है, ये आम शीशम नीम बबूल का नहीं बन सकता है। इसके लिए तुन की लकड़ी, पड़तल की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी, इन्हीं के बक्से बनते हैं। आप लकड़ी परचेज करके उसको ले आइए और घर में बक्से बनवाइए। जो भी मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं उनसे आप संपर्क करिए कि बक्से हम बना रहे हैं, आपको खाली बक्सों की जरूरत है, आप हमसे लीजिए। जो अगर वो बक्सा उनको कहीं 2000 रुपए का मिल रहा है या 1800 का मिल रहा है, आप उनको 1500 का दीजिए। आपकी कॉस्ट आई 800 रुपए और आपने 1500 का दिया तो आपको एक बक्से पे समझ लीजिए कि 700 रुपए बच गए। ऐसे अगर आपने महीने में 10 बक्से बेच दिए तो आपके कितने पैसे हो गए। आपने कुछ शहद बेचा, कुछ मधुमक्खी के बक्से बेचे, कुछ मोम बेचा, तो बड़े आसानी से आपको महीने में 10-12 हजार रुपए मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें कोई ना आपको परेशान करने वाली बात है ना इसमें कोई ऐसी टेक्निक है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, संपर्क करना पड़ेगा। दूसरा है किसान भाई, मधुमक्खी पालन संबंधी कुछ उपकरण हैं, आप उनको बनवाइए। जैसे मधु निष्कासन यंत्र है, ये एक टीन का गोल डिब्बा सा होता है, इसमें चौकोर फ्रेम होता है, ऊपर एक हैंडल लगा होता है और इस जो फ्रेम होता है इसमें मधुमक्खी के एक साथ में 2 फ्रेम आ जाते हैं और इसको जब घुमाते हैं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है और छत्ती का शहद
निष्का सेतु करके उसमें चला जाता है, और बाद में उसको हम निकाल लेते हैं और बोतलों में पैक कर लेते हैं, इससे छत्ता भी नहीं टूटता है। तो इसको अगर आप बनवाएंगे तो मुश्किल से इसकी कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा जब पड़ेगी, विद बनवाई की 1200 रुपये में पड़ेगी और इसकी कीमत 2500 रुपये है। तो आपको बड़े आसानी से इसमें अगर आपका एक भी बिच गया तो 1000-1200 रुपये आपके बच गए। ऐसे मूरक्षक जाली है, जो मधुमक्खी पालन में का व्यवसाय शुरू शुरू में करते हैं तो उनको भय रहता है कि कहीं मधुमक्खी मेरे मुंह पर डंक न लगा दे, सूजन आ जाएगी, देखने में भद्दा लगेगा। तो वो लोग मुंह की रक्षा के लिए एक जाली होती है, वो ऊपर कपड़ा होता है कैप नुमा, और नीचे गले तक वो फंस जाती है। अगर आप उसको बनवाएंगे तो ये इसकी कीमत है 70 रुपये, लेकिन आप इसको घर में बनाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल ये 20-25 रुपये में बन जाएगी, और 20-25 रुपये आपको मिल जाएंगे अगर आप इसको बेचेंगे। ऐसे ही इसको इसके साथ में एक बकछूट थैला है, जिसे हम स्वार्म बैग कहते हैं इंग्लिश में। ये एक पतले कपड़े का होता है, अगर हमें खाली मधुमक्खियां कहीं ले आना होता है, खरीदना होता है, तो अगर हम इनको बनवाएं तो ये भी 70 रुपये का है, और इसको अगर हम घर में बनाएंगे तो 20-25 रुपये में बनकर के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही एक हाइप टूल है, जो बक्से मधुमक्खी पालन के लिए, मोन पालक के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें बीच में सुराख होता है और एक सिरा इसका मुड़ा होता है, दोनों सिरे इसके पैने होते हैं। ये मधुमक्खी के बक्से को पैक करने में, बक्से के नीचे कहीं घास उगाई है, कहीं हल्का फुल्का खुदाई में, ये सब में काम आता है, कील ठोकने में। ये एक सिंपल सी पत्ती का होता है, इसकी कीमत 50 रुपये है। अगर आप इसको घर में बनाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल ये 10 रुपये में बन जाएगा। कितना भी आप ऐसे ही वायर एम्ब्रॉयडर है, दाग गिरी है, जो छतों में हम फ्रेम लगाते हैं कॉम फाउंडेशन का, जिसे हम मोमी छत्ताधार कहते हैं, वो तार पर रख करके इसको वायर एम्ब्रॉयडर को घुमा देते हैं तो वो गर्म करके, तो वो तार कॉम फाउंडेशन के नीचे चला जाता है और वो गिरता नहीं है। ऐसे ही इससे संबंधित स्मोकर है, जिसको हम धुआं कर कहते हैं, जब मधुमक्खियां तेज हो जाती हैं और डंक लगाने के लिए दौड़ती हैं तो इसमें एक कपड़ा रख करके, इसमें स्प्रिंग लगा रहता है और प्लास्टिक का गोल वो होता है, नीचे से जब दबाते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है, मधुमक्खियां शांत हो जाती हैं, डंक नहीं लगाती हैं। तो ये भी हर मोन पालक के पास होता है, तो आप इसको बनाइए, इसकी कीमत 100 रुपये है। ऐसे मधुमक्खी से संबंधित क्वीन बक्सा है, अगर आपके बक्से की क्वीन मर गई है, आपको कहीं से क्वीन ले आना है, तो आप इस बक्से में क्वीन को आप ले जा सकते हैं। ऐसे ही आर्टिफिशियल फीडर है, जिसे हम भोजन पात्र कहते हैं, जब मधुमक्खियों को क्षेत्र में उनको नेक्टर और पोलन नहीं मिलता है, जब वनस्पतियों पर फूल नहीं होता है, तो ऐसे में इनको जीवित रखने के लिए कृत्रिम भोजन देना पड़ता है। जी चीनी का घोल होता है, और सर्दी का अलग घोल होता है, और गर्मी का अलग घोल होता है, जो बक्सों में रख कर के खिलाने के लिए इनके फ्रेम की साइज का होता है। इसमें हम चीनी का घोल भर देते हैं, मधुमक्खियों के बक्से के अंदर जहाँ फ्रेम रखे जाते हैं वहाँ रख देते हैं, इनर कवर के नीचे। तो ऐसे ही इसमें मधुमक्खियों अपना भोजन, कृत्रिम भोजन खा लेती हैं, और सुबह इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, इसे हम बना करके। तो मेरे किसान भाई और मेरे जो बेरोजगार भाई हैं, आज नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, घर में बोझ बने हुए हैं, तो वो अगर इन धंधों को अपनाए तो निश्चित है कि उनकी बेरोजगारी दूर होगी और वो अपने परिवार को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, और अपने और भाइयों को जो बेरोजगार हैं उनको भी वो रोजगार दे सकते हैं। तो ऐसे ये मधुमक्खी से संबंधित कुछ कुटीर उद्योग थे, जो जिनसे बेरोजगारी दूर की जा सकती है। गवर्नमेंट के पास में इतनी नौकरियां कहाँ हैं, और ना सभी को नौकरी मिलती है, लेकिन बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली,
बंबई जाते हैं और वहां कमाते हैं और वो सब उनका वहीं खर्च हो जाता है। अगर हम घर में रह करके उन कुटीर धंधों को अपनाएं तो हम पंजाब हरियाणा या घर से पलायन करने की हमें आवश्यकता नहीं है और इससे ही हम अपनी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।

0: बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम
1: आजीविका में।
0: और दोस्तों आजीविका कार्यक्रम में अभी आपने सुना डॉक्टर महेश चंद जी को और जाना कि किस तरीके से हमारे युवा साथी मधुमक्खी का पालन का व्यवसाय करके अपनी आजीविका को अपनी आय को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं।
1: जी हाँ, जिससे बेहतर आजीविका बन सकती है और साथियों आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनीष जी, हम उस दिन बरुआ सागर के क्षेत्र में गए थे तो हमें देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि हमारे जो साथी जो पहले खेत थे लहलहाते दिखाई देते थे इस समय पर, लेकिन आज देख रहे हैं वहां पे सूखा पड़ा हुआ है पानी के कारण। लोगों के पास आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए वो पलायन कर गए हैं।
0: बिल्कुल सही बात कर रही हूँ वर्षा, और हमने भी ये सोचा है और उन्होंने उनसे जानकारी भी ली है तो उन्होंने बताया कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो बाहर फैक्ट्रियों में जाते हैं या फिर वो बाहर पलायन कर जाते हैं, जैसे दिल्ली बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं और अपनी आजीविका को चलाने के लिए वहां पर मजदूरी करते हैं। तो उनसे बात बहुत सारी निकल के आई, वो कार्य करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो चीज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको एक बेहतर ढंग से किस तरीके से वो एक प्लान वे तरीके से व्यवसाय को कर सकते हैं, ये आइडिया की थोड़ी कमी हमें दिख रही थी।
1: जी, कमी दिख रही थी, साथ ही साथ उनको ललक है उस चीज की करने की कि हम अपने ही गांव में कुछ ना कुछ करें, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई एक रास्ता होता है ना कि कोई सही रास्ता कोई दिखाने वाला होना चाहिए। तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रेडियो बुंदेलखंड बिल्कुल यही काम कर रहा है कि आपकी आजीविका को हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं जिसके कारण आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमसे जुड़े रहिए, इसी तरह आजीविका प्रोग्राम सुनते रहिए।
0: बिल्कुल, और आजीविका कार्यक्रम में अब वर्षा अब हमारा समय भी होता है इस कार्यक्रम शुभकल से जाने का। और साथियों यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि आप अपने सुझाव या राय अपने रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से नहीं देंगे तो हम कार्यक्रमों को आपको किस तरीके से कार्यक्रम की जरूरत है, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं, वो सारी चीजें हमें आपके राय और सुझाव से निकल के आएंगे।
1: जी हाँ साथियों, और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई जो भी आपके मन में सवाल हो या फिर आप जुड़ना चाहते हैं मधुमक्खी पालन से या जितने भी प्रोग्राम आज तक हम लोगों ने आजीविका में दिए हैं, तो हमें जरूर संपर्क करें हमारे इस नंबर पर।
0: नंबर है
2: 9219207749।
0: और अधिक जानकारी के लिए वर्षा आपको बता भी दें, हम अपने श्रोता साथियों को बताना चाहते हैं कि अधिक जानकारी के लिए औद्योगिक एवं प्रशिक्षण केंद्र बरुआ सागर है, जहां पर वो डॉक्टर महेश चंद जी और भी उनके संबंधित वैज्ञानिक हैं, उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं किस तरीके से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं।
1: जी हाँ साथियों, अब हमें दीजिए इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपके लिए इसी तरह का प्रोग्राम लेकर, इसी तरह की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: हम होंगे कामयाब। कार्यक्रम में शुरुआत करने से पहले श्रोताओं आप सभी को बता देना चाहते हैं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: जी हां श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में एक दिन जरूर कामयाबी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं, लगन से रहते हैं और हिम्मत रखते हैं कि हम जरूर कुछ कर दिखाएंगे। क्योंकि कई बार जब हम कोई काम बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी निगेटिविटी भरी होती है लोगों के मन में कि वो हमें जहां पे उन्हें उत्साहवर्धन करना चाहिए वहां वो हमें निराश कर देते हैं। उनके शब्दों से हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि शायद ये काम हम नहीं कर सकते, लेकिन वहीं अगर हमारा आत्मविश्वास हमारा साथ देता रहेगा तो जरूर हम वो काम सफल कर पाएंगे। ऐसी ही एक कहानी आज हम आप सबके बीच में सुनाने वाले हैं, एक सफल कहानी जो कि एक महिला की कहानी है जिनके पास न परिवार का सपोर्ट था न पति का साथ था, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत से अपनी मेहनत से अपने ससुराल वालों का सहारा बनी और बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को उजागर करने के लिए आगे आई।
1: सही कहा बिल्कुल। और साथियों हम बताना चाहते हैं क्योंकि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम छोटी सी पूंजी लगा के किस तरीके से व्यवसाय कर सकते हैं इस पर भी हम एक नजर डालते हैं, साथ साथ में हम जो हमारे रोजगार सूचनाएं रहती हैं उसको भी हम बताते हैं, साथ साथ में जो गवर्नमेंट्स के साथ स्कीम्स आती हैं उस पर भी हम जिक्र करते हैं। लेकिन खास तौर पर देखा जाता है कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम कहानी पर भी फोकस करते हैं और उन कहानियों को हम सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर हम भी एक व्यवसाय कर सकते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में घर वालों परिवार की या समाज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन उस समय जब महिलाओं को खास तौर पर समाज की घर वालों की सपोर्ट की जरूरत रहती है तब वहां पर कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हम और आप देखते हैं कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, खासतौर पर महिलाओं की अगर बात करें, बेटियों की अगर बात करें तो बेटियों को जो समानता का दर्जा देने की बात चल रही है वो समानता का दर्जा देते भी हैं और खासतौर पर महिलाओं को सशक्त होने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। हम कभी कहीं भी ऐसा नहीं आंकते हैं कि महिलाएं हमसे कमजोर हैं, वो कुछ काम नहीं कर पाएंगी, वो बस घर के चूल्हे और रसोई तक सीमित रहेंगी, ऐसा नहीं है। आज की इस दुनिया में भागम भाग बड़ी दुनिया में आज हम महिलाओं की अगर बात करें, उनकी जीवनी की बात करें, उनकी व्यवसाय की बात करें तो वास्तव में एक हमारी आंखें खुल जाती हैं और हमें सोचने के लिए मजबूर हम हो जाते हैं कि वास्तव में महिलाएं इतना कुछ कर सकती हैं, इतना सहने के बाद इतना आगे बढ़ सकती हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक हम महिला की बातचीत बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम छोटा काम बड़ा मुनाफा में, अंगूर की खेती उन्होंने किस तरीके की थी उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ में किस तरीके से हम अंगूर का व्यवसाय कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे।
0: तो मनीष भैया आपको क्या लगता है कि पहले हमें कहानी सुननी चाहिए या फिर आप जो तरीके बता रहे हैं कि अंगूर की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए उन पर बात करनी चाहिए?
1: हमें लगता है कि हमें महिला जो सफल महिला हमारी निकल के आई हैं उनकी हम कहानी एक बार सुन लेते हैं, इसके बाद हम छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा जरूर करेंगे।
0: बिल्कुल, उन्होंने कहा था

उन्होंने कहा था कि महिलाओं के बस की बात नहीं है खेती, लेकिन संगीता ने साल में 30 लाख रुपए कमाकर किया उनकी बात को गलत साबित। श्रोताओं, यहाँ पर संगीता जी बताती हैं कि उनसे कहा गया था कि एक अकेली महिला खेत नहीं संभाल सकती, इसलिए वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन वो बताती हैं कि ऐसी बातें कहने वालों को गलत साबित करना चाहती थी मैं। ये कहना है कि नासिक के मटोरी गांव में अंगूर की खेती करने वाली महिला किसान संगीता जी का जिंदगी ने कदम कदम पर संगीता का कड़ा इम्तिहान लिया। पहले उन्होंने अपने बच्चे को खोया और फिर पति की भी मौत हो गई। कुछ साल पहले ससुर भी नहीं रहे, लेकिन संगीता ने हार नहीं मानी। अपने दो बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने खेत की पगडंडियों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। लोगों ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की, पर उनका इरादा पक्का था। आज वह ट्रैक्टर चलाती हैं, मार्केट का भी काम संभालती हैं और अपने अंगूर की खेती से लाखों रुपए कमा रही हैं। संगीता बताती हैं कि साल 2004 में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को खो दिया था। अभी उस सदमे से उबरी ही नहीं थी कि 2007 में एक सड़क दुर्घटना में उनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय वे 9 महीने की गर्भवती थी। सब कुछ बर्बाद हो गया था। वो अकेली थी और जीने की इच्छा भी जैसे मानो खत्म सी हो गई थी। संगीता 10 साल तक तो अपने सास ससुर और रिश्तेदारों के साथ संयुक्त परिवार में रहती थी, लेकिन 2017 में पारिवारिक झगड़ों के चलते वह अपने सास ससुर के साथ अलग हो गई। बदकिस्मती ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 2 महीने बाद ही उनके ससुर की भी बीमारी से मौत हो गई। 39 साल की संगीता उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं, जिन लोगों ने जीवन में हमेशा मेरा साथ दिया उनको मैंने खो दिया। अब मैं अकेली थी और जीने की इच्छा भी जैसे खत्म हो गई थी। इस पारिवारिक त्रासदी का मतलब यह भी था कि संगीता को अब अपने ससुर द्वारा छोड़े गए 13 एकड़ के खेत को भी अकेले ही संभालना था। उन्होंने कहा, खेती हमारी आमदनी का एकमात्र जरिया था। कुछ महीने पहले जिन रिश्तेदारों से हम अलग हुए थे उन्होंने यह दावा किया था कि वो अकेले खेत और घर नहीं संभाल पाएंगी। उनके अनुसार खेती करना महिलाओं का काम नहीं है, लेकिन संगीता ने उन सभी को गलत साबित कर दिया। आज वह अपनी 13 एकड़ जमीन पर अंगूर और टमाटर की खेती करती हैं। टनों की उपज है और उससे लाखों की कमाई होती है। समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपनी कहानी बताते हुए संगीता कहती हैं, खेती करने के लिए अपने गहनों को गिरवी रखकर कर्ज लिया था। चचेरे भाइयों से पैसे भी उधार लिए थे। मेरे भाइयों ने खेती करने में उनकी बहुत मदद की। उन्होंने अंगूर की खेती के हर पहलू से रूबरू कराया। कौन से रसायन का कब इस्तेमाल करना है, पैदावार बढ़ाने के लिए क्या तकनीकी अपनानी है और भी बहुत सी चीजें। विज्ञान की छात्रा होने की वजह से उन्हें काफी सारी चीजें सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंगूर की खेती करते हुए संगीता को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया, कभी पानी का पंप खराब हो जाता तो कभी बेमौसम बारिश से नुकसान, कभी फसल में लगे कीड़ों से निपटना पड़ता तो कभी मजदूरों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह आगे कहती हैं, महिलाएं खेती तो संभाल लेती हैं, लेकिन दूसरे ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते आए हैं, जैसे ट्रैक्टर चलाना, मशीनों की मरम्मत करना, उपकरणों का इस्तेमाल और सामान खरीदने के लिए बाजार जाना। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, दोनों जिम्मेदारी अब मुझे ही संभालनी थी। मैंने 2 व्हीलर और ट्रैक्टर चलाना सीखा। कुछ दिन तो ऐसे भी थे जब ट्रैक्टर ठीक कराने के लिए मुझे पूरा दिन वर्कशॉप में बिताना पड़ता था। खेती ने सिखाया लगन और धैर्य। धीरे धीरे ही सही लेकिन संगीता के खेत ने फल देने शुरू कर दिए थे। हर साल उनके खेत में 800 से 1000 टन अंगूर की उपज होती है, जिससे वह 25 से 30 लाख रुपए सालाना कमा लेती हैं। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई के लिए

0: पर छोटे स्तर पर टमाटर की खेती भी करती हैं। आज संगीता की बेटी ग्रेजुएशन कर रही है और बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। संगीता ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंगूरों को निर्यात करने की योजना भी बनाई। उन्होंने बताया, इस बार बेमौसम बारिश और खराब मौसम ने मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने से रोक दिया, लेकिन अगले सीजन में ऐसा कर पाऊंगी, उनकी इसकी पूरी उम्मीद है। संगीता के अनुसार खेती ने उन्हें लगन और धैर्य रखना सिखाया। उन्हें गर्व है कि वह उन लोगों के सामने खुद को साबित कर पाई जिन्हें उनकी काबिलियत पर शक था। वह कहती है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, मुझे बहुत दूर तक जाना है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं सभी बाधाओं को पार करके सफलता हासिल कर पाई। यह मेरी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का ही नतीजा है। तो श्रोताओं, ये थी कहानी संगीता की, जो कि नासिक के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली है। अब हमारे सभी श्रोताओं के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो कहानी है वो बुंदेलखंड की नहीं है, फिर भी रेडियो बुंदेलखंड पर क्यों चलाई जा रही है। तो श्रोताओं, अब हमें एक चीज का और भी ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने बुंदेलखंड में ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि हर एक क्षेत्र में पहुंच अपनी बना चुका है। इसलिए जहां भी हमारे श्रोता इस जानकारी को, इस कहानी को सुन रहे हैं और आपके यहाँ अगर अंगूर की खेती हो सकती है तो आप इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अंगूर की खेती में ही अपना लक्ष्य बना सकते हैं या अपनी सफलता पा सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो हो सकता है आप उसमें भी अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बस जरूरत है तो हिम्मत रखने की और बहुत सारी मेहनत करने की।
1: सही कहा। और साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि अंगूर की खेती, चूंकि नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है, लेकिन हम अगर व्यावसायिक तौर पर इसको देखा जाए तो नासिक की खेती और अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए कि अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में हम अंगूर की खेती करें तो इस पर भी कार्य हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं, जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी ठंडे देशों में स्ट्रॉबेरी की खेती होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जलवायु को देखते हुए हम कहीं भी इस तरीके की खेती नहीं कर सकते हैं। अगर उदाहरण आपके सामने है, अगर देखा जाए जमुनिया गांव में जहां पर थाई एप्पल वेल, जो थाईलैंड में सिर्फ इसकी खेती की जाती है, उसके बेर यहां पर जब पैदा हो सकते हैं उसको उगाया जा सकता है, कश्मीरी एप्पल वेल। और खासतौर पर एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल यानी सेब, जो हम सिर्फ कश्मीर में अधिकतर देखा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा पैदावार होती है, लेकिन यहाँ के किसान, हमारे जमुनिया किसान ने उसको एक प्रैक्टिकल के तौर पर इसको देखा कि क्यों ना इस जलवायु में हम एप्पल की खेती करें, लेकिन वो सफल हुए और आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं की खेती कहीं नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें समझने, सोचने और उस तकनीकी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आपको समझना होगा, सोचना होगा। स्ट्रॉबेरी की दोस्तों बात करें तो स्ट्रॉबेरी यहां पर अपने पास में हसारी है, वहां पर स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और उसको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी उनको किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो खेती के बारे में बताते हैं या फिर जिस व्यवसाय के बारे में हम बताते हैं तो यहां पर बुंदेलखंड क्षेत्र में वो संभव नहीं है। संभव हर चीज है, लेकिन आपको कहा गया है कि हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए और उस लक्ष्य के साथ साथ आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए और आपको विश्वास होना चाहिए कि हम इस पर जरूर जरूर खरे उतरेंगे। हम साथियों कुछ देर बाद आपको, चूंकि हम जब गीत संगीत इस कार्यक्रम में एक सुनते हैं, इसके बाद हम किस तरीके से खेती होती है, कहां पर खेती होती है अंगूर की, इसके बारे में भी हम छोटी चर्चा करेंगे और इस पर भी एक नजर हम जरूर डालेंगे। तो आइए इसी बीच हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: अपना रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं आप सभी अभी गीत सुन रहे थे, गीत का आनंद ले रहे थे। कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम यहां पर अंगूर की खेती के बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं कि भारत में अंगूर की खेती कहां कहां होती है और किस प्रकार से हम अंगूर की खेती कर सकते हैं।
1: सही कहा, क्योंकि अंगूर की खेती के बारे में समझना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक हम उस बात को समझेंगे नहीं तब तक हम उस कोशिश को हम पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत में व्यावसायिक रूप में अंगूर की खेती पिछले लगभग 6 दशकों से की जा रही है और आप आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बागवानी उद्यम के रूप से अंगूर की खेती काफी उन्नति पर है। आज महाराष्ट्र सबसे अधिक क्षेत्र में अंगूर की खेती की जाती है तथा उत्पादन की दृष्टि से यह देश की अग्रणी है। भारत में अंगूर की उत्पादकता पूरे विश्व में सर्वोच्च है। उचित कटाई छटाई की तकनीक का प्रयोग करते हुए मूल व्रंतों के उपयोग से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अंगूर की खेती की व्यापक संभावनाएं उजागर की गई हैं। अब आपको पता होगा कि कहां कहां कौन कौन सी किस्में रहती हैं अंगूर की, ये बात जानना बहुत जरूरी है। भारत में लगाई जाने वाली कुछ किस्में हैं जो आपको बता देना चाहते हैं। अनब ए शाही, यह किस्म आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक राज्यों में उगाई जाती है। यह व्यापक रूप से विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के अनुकूल है। यह किस्म देर से परिपक्व होने वाली और भारी पैदावार होने वाली खेती है। बेरियां जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं तो ये लंबी और मध्यम लंबी और बीज वाली और एम्बर रंग की हो जाती हैं। इसका जूस साफ और 14 से 16% TSS सहित मीठा होता है। यह केवल कोमल फफूंदी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। औसत उपज इसकी 35 टन है। फल बहुत अच्छी क्वालिटी वाला रहता है और तालिका उद्देश्य हेतु ज्यादातर इस्तेमाल इसे किया जाता है। दूसरा आता है बैंगलोर ब्लू, यह किस्म है। यह किस्म सिर्फ कर्नाटक में उगाई जाती है। बेरियां पतली त्वचा वाली छोटी आकार की, गहरे बैगनी, अंडाकार और बीजदार वाली होती हैं। इनका रंग बैगनी रंग का होता है, साफ और आनंदमय सुगंधित 16 से 18 TSS वाला होता है। फल अच्छी क्वालिटी का होता है और इसका उपयोग मुख्यतः जूस और शराब बनाने के लिए किया जाता है। भोकरी किस्म रहती है, किस्म सिर्फ तमिलनाडु में उगाई जाती है। गुलाबी रहते हैं, ये भी तमिलनाडु में उगाई जाती है। काली सराबी के नाम से आपको ज्यादातर आपने देखा होगा। यह किस्म छोटे पैमाने पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। इसकी बेरियां लंबी, अंडाकार और बेलनाकार, लाल बैगनी और बीजदार होती है। इसमें TSS 22% होता है। यह किस्म जंग और कोमल फफूंदी के प्रति अति संवेदनशील होता है। परलेटी, यह किस्म पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के राज्यों में उगाई जाती है। इसकी बेरियां बीज रहित छोटे आकार वाली, थोड़ा

0: एल्पोसोडियल गोलाकार और पीले रंग की होती हैं। इसमें भी 16 से 18 टीएसएस सहित साफ और हरा रंग होता है। शरद सीडलेस यह रूस में स्थानीय किस्म है। इसे किशमिश क्रोनी कहा जाता है। इसकी बेरियां बीज रहित काली और कुरकुरी और बहुत मीठी होती हैं। उपयोग आपको पता होगा, अंगूर एक स्वादिष्ट फल है। भारत में अंगूर अधिकतर ताजा ही खाया जाता है। वैसे अंगूर की कई उपयोग हैं। इससे किशमिश रस और मदरा भी इसमें बनाई जाती है। अब आपको पता होना चाहिए इसके लिए जलवायु किस तरीके से होनी चाहिए, ये भी आप जान लीजिए। अंगूर की जड़ की संरचना काफी मजबूत होती है, अतः यह कंकरीली रेतीली से चिकनी और उथली से गहरी मिट्टियों में सफलतापूर्वक पनपता है। लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो अंगूर की खेती के लिए उचित पाई जाती है। अधिक चिकनी मिट्टी में इसकी खेती ना करें और बेहतर रहेगा। अंगूर लवणता के प्रति कुछ हद तक सही रहता है और जलवायु का फल के विकास और पके हुए अंगूर की बनावट और गुणों पर काफी असर इसका पड़ता है। इसकी खेती में के लिए गर्म शुष्क और दीर्घ ग्रीष्म ऋतु अनुकूल रहती है। अंगूर के पकते समय वर्षा और बादल का होना बहुत ही हानिकारक होता है। इससे दाने फट जाते हैं और फलों की गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। बेलों की रोपाई, बेलों की छटाई किस तरीके से करनी चाहिए, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी रहता है। बेलों की छटाई के लिए अंगूर की बेल साधने हेतु पंडाल, बाबर, टेलीफोन, निफिन और हेड आदि पद्धतियां प्रचलित हैं। लेकिन व्यवसायिक स्तर पर इसको पंडाल पद्धति से अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। पंडाल पद्धति द्वारा बेलों के साधने हेतु 2.1 से 2.5 मीटर ऊंचाई तक कंक्रीट के खम्भों को के सहारे इनको तारों के जाल पर बेलों को फैलाया जाता है। जाल तक पहुंचने के लिए केवल एक ही तना बना दिया जाता है। तारों के जाल तक पहुंचने के पर ताने को काट दिया जाता है ताकि पार्श्व शाखाएं उगी हुई प्राथमिक शाखाओं पर सभी दशाओं में 60 सेंटीमीटर दूसरी पार्श्व शाखाओं के रूप में विकसित की जाती हैं। खाद के लिए खाद क्या उर्वरक के कौन सा देना चाहिए, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। अंगूर की बेल भूमि में काफी मात्रा में पोषक तत्व का ग्रहण करती है, अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली फसल लेने के लिए आवश्यक है खाद और उर्वरकों द्वारा पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। पंडाल पद्धति की सीधी 3x3 मीटर की दूरी पर लगाई गई अंगूर की 5 वर्ष की बेल में लगभग 500 ग्राम नाइट्रोजन, 700 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, 700 ग्राम पोटेशियम सल्फेट और 50 से 60 किलोग्राम गोबर की खाद की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो इस तरीके से हम अपने अंगूर की फसल को लगा सकते हैं और उत्पादन कर सकते हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो हम एक छोटा सा व्यवसाय भी इसको कर सकते हैं कि हम नासिक से अंगूर की पेटी खरीद कर यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में बेचा है, तो ये भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। इस पर भी हम अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीष भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ वहाँ से इकट्ठी कर हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, ताकि बहुत कम शब्दों में अगर कहा जाए तो कैसे हमारे श्रोता साथी एक बेहतरीन व्यवसाय कर सकते हैं अंगूरों का, अगर वो करना चाहे तो। जो आखिरी में आपने कहा कि अगर आप पेड़ों को नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी वैसी नहीं है, अगर तो आप नासिक से डायरेक्ट जाके वहां से पेटी की पेटी खरीद कर और यहाँ अपने बुंदेलखंड में आके उनको बेच सकते हैं, ये भी एक तरह का व्यवसाय ही है।
0: सही का वर्षा। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, लेकिन छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं इसके लिए आपको एक प्लान की जरूरत पड़ती है कि हम किस तरीके से प्लान बनाया जाए, उसकी ट्रेनिंग्स की जरूरत पड़ती है। केबीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा झांसी में बना हुआ है, वहां पर जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं वहां पर भी हमें सलाह लेनी चाहिए किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, किस तरीके से हम व्यवसाय कर सकते हैं। ये सलाह होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तब जाकर हम एक अच्छे व्यवसायी बन सकते हैं और अच्छा पैसा हम कमा सकते हैं छोटी सी पूंजी लगाकर।
1: बिल्कुल, और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि श्रोताओं, अगर आपने भी इस प्रकार की कोई खेती करी है और उस खेती को व्यावसायिक तरीके से अगर आपने किया है तो हमें जरूर बताइएगा, ताकि आपकी कहानी

0: हम इसी प्रकार से जैसे संगीता जी की कहानी हमने लोगों को सुनाई, ऐसी आपकी कहानी भी हम और लोगों तक पहुंचा सके, जिसके लिए आप हमें नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: श्रोताओं, आप सभी को फिर से बता देना चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड आप सिर्फ रेडियो पर नहीं, आप ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, जिसके लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है और आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाकर रेडियो बुंदेलखंड जब लिखेंगे तो ग्रीन कलर का यानी हरे कलर का आपको लोगो दिखाई देगा और उसमें हिंदी में रेडियो बुंदेलखंड लिखा होगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें और भारत के किसी भी कोने में यानी दुनिया के किसी भी कोने में आप रहकर रेडियो बुंदेलखंड को सुन सकते हैं, अपना और आनंद ले सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं, साथ में अपनी बात को भी कह सकते हैं।
1: अब यहीं पर विराम लेते हैं क्योंकि अब और वक्त हो चुका है, हमारे अगले कार्यक्रम का भी हो रहा है। तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: हेलो सहेली हेलो सहेली नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हूँ
1: हम देखते दीदी का हमें एक वो सुना दो एक गीत।
0: हाँ कौन सा सुना दे?
1: बिल्कुल मैं चल जाती हूँ तुम्हारी नगर जाए भाई दीवानी में बारी हमारी जाऊंगा
0: संध्या सागम को है वो।
1: हाँ
0: बिल्कुल यानी नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
1: दीदी सुना।

0: कहां से यहां टपकी? तो इस बीच में बोली आप कौन है, कैसे, किसने बताया बैठे? बोले हम भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा में बैठे हैं और हम विष्णु से, बोले क्या मांगना है? बोले नहीं, हमको दर्शन पर्याप्त है, दर्शन मिल जाए। तो उन्होंने कि भाई विष्णु भगवान आएंगे, दर्शन मिलेंगे आपको, और ये अपने तपस्या में लौलीन हो गए। तो नारद जी ने विष्णु भगवान का बताई कि दो भक्त बैठे, राजा मनु और रानी शत्रुपा, वो भी आपके दर्शन चाहते। बोले दर्शन देने में क्या तकलीफ है? तो कई बार विष्णु भगवान, उन्होंने सोची नारद जी जैसे और कोई आ गए, तो विष्णु भगवान कई बार आए कि राजन नेत्र खोलो, वरदान मांग लो, क्या मांगने, हम विष्णु हैं। देखो उन्होंने नेत्र नहीं खोले। जब बार बार सिंहासन डिगन लगी तो विष्णु भगवान परेशान हो गए, लक्ष्मी जी परेशान हो गई, सिंहासन बार बार डिग रही थी क्षीर सागर में। तो फिर एक बार भगवान विष्णु आए, बोले कल भाई राजन आज जो भी वरदान मांगने हो, मैं मांगे वरदान ले लो, और फिर जी मौका नहीं मिलेगा। इस बीच में राजा मनु ने अपने नेत्र खोल लिए और चरण वंदना की। तो इसने सोची कौन सा हम वरदान मांगे, ये भी हमने विचार में नहीं बना पाओ। वो लेकर लाए ऐसा हमें पुत्र मिल जाए तो सबसे अति उत्तम है। तो मन में विचार किया, मुखारबंद से नहीं की राजा मनु ने कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, मन में विचार किया कि हमें विष्णु भगवान जैसा ऐसा पुत्र मिल जाए। तो विष्णु भगवान तो तीन लोग के नाथ थे, उन्होंने सोची ऐसा पुत्र तो कहीं दूसरा हो ही नहीं सकती हमारे सिवाय, तो उसमें समय लगेगा। तो उन्होंने की ठीक है वस्तु ऐसा ही होगा। तो उन्होंने बताई भगवान विष्णु भगवान ने कि अभी तो जो है सत्ययुग चल रहा है, जब त्रेता आएगा त्रेता में आपको हम ऐसा पुत्र मिलेगा। तो मतलब निशान दिखा गई। इसके बाद माता शत्रुपा के पास पहुंची विष्णु भगवान, उन्होंने देवी कहा है शत्रुपा से कि देवी वरदान मांग लो, क्या मांगना है? तो उन्होंने सोची कौन सा वरदान मांगे, तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो पति ने वरदान मांगे वे हमें प्राणों से अति प्यारे हैं। जबकि राजा रानी को भी पता नहीं था कौन वरदान ने मांगे क्या है, लेकिन उन्होंने की अति उत्तम है, और जो पति ने वरदान मांगे वे हमें प्राणों से प्यारे हैं। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है, अभी आप सतयुग चल रहा है, बैकुंठ पान करो, अमरावती स्थान दो आपका, अमरावती में बैकुंठ पान करो, जब त्रेता आएगा तो हम पुत्र के निमित्त में हम ही आएंगे आपके यहाँ, और दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम पुत्र के निमित्त में आपके यहाँ आएंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है आप बैकुंठ पान करो, विष्णु भगवान अपने चले जाते हैं और नए अमरावती में अपना आसन जमा किया, मतलब बैकुंठ पान की गया। जब जो त्रेता योग आया तो त्रेता में राम बारह कला से भरे, भरत जी चार कला से भरे, मतलब इस तरीका से, और मतलब सीता जी आई। तो जी मतलब विष्णु भगवान का अवतार है राम। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग तो चार ही है, इन्हें चार में फिर बदल होता रहो समय समय पे। तो भगवान त्रेता में पुत्र के निवृत्त में आए शत्रुपा, जो राजा मनु थे शत्रुपा थी, बयान के दशरथ और कौशल्या हो गए। इसके बाद जो कौशल्या है और वो जो है कौशल्या और दशरथ थी, फिर आने के जी जो है भाई यहाँ पे देवकी और वासुदेव, उन्हीं का अवतार है। और आज यह स्थिति है कि वो तो महान शक्ति है, थी महान शक्ति हैं और रहेंगी, जो पूर्व में है माता पार्वती हैं और शंकर भगवान हैं, उन्हीं का रूप कारसदेव का है, कारसदेव के रूप में शंकर जी हैं, और जो हेलादी बहन है वो माता पार्वती हैं। तो आगे तो बहुत पुरानी है, और लेकिन अब जाए कि एक तो कम समय है और समय के संगे जो है मतलब बहुत लंबी कथा है, इसलिए जो है इसका शॉर्ट में।
1: हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, आपने देखो कितना अच्छा वृत्तांत जो सुना दो। अब एक क्रम में आपसे हम जो भी जानना चाहे कि आपने इनके अलावा और कौन रुचि लाई, कुछ
0: रुचि के लाने तो वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से हम जुड़े रहे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे कहीं कीर्तन है, कहीं भजन है, और कहीं मतलब गोट गायन है, कभी फाग सम्मेलन है, कभी किसान सम्मेलन है, तो कहीं ना कहीं तो जुड़े रहे। अच्छा इसी क्रम में जैसे मतलब कभी शंकर जी बनवा उतरे,
1: अच्छा
0: हाँ, तो जैसे अबे एक माह शंकर जी बने अपने यहाँ घर पे, और फिर अबे 14-15-16 तारीख में मतलब

0: तीन दिन कार्यक्रम चला, तो उसमें मतलब अखंड रामायण चली, और फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय को कीर्तन जी चलो, और फिर गुड गायन भी चलो। तो अभिजीत 14-15-16 तारीख में कार्यक्रम करे गए, और मैं तो जी चाहता हूं कि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ा रहे, पुरानी परंपराएं लुप्त ना हो जाएं, इसका जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये करने से पाप क्षय होता है, और आगे अगले पन के लिए, जैसे अपन आज अपन जो भोजन करते हैं और आगे जो भोजन करेंगे उसकी व्यवस्था करते, इसी प्रकार से मनुष्य योनि है, इस मनुष्य योनि में अभी अपन कुछ कर सकते हैं। अगर पशु बनाता हो तो एक जगह बंधे बंधे क्या कर सकते हैं, और मनुष्य योनि में है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस मनुष्य योनि के लिए देवता तरसते हैं, मतलब
1: सही बात कह रहे हैं
0: अगर
1: आप।
0: देवता भी सामने आ जाए तो आदमी भय खा जाए, वो
1: बिल्कुल
0: तो प्रेत आ जाए तो भय खा जाए, और मनुष्य बात कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अभी मौका है, कर लेना चाहिए। युग तो चार ही है, सत्ययुग, द्वापर, त्रेता कलयुग। तो इस कलयुग में भी एक राम नाम ऐसा है कि जिसका रटने से उद्धार हो जाता है,
1: बस केवल नाम लेने से।
0: नाम लेने से। पहले यज्ञ करते थे सत्ययुग में तो उतना पुण्य होता था, आज जो है राम का नाम लेने से मतलब कृतार्थ हो जाते हैं। तो शंकर जी बनत रहे, और शंकर जी के संगे, शंकर जी को तो बहुत सीधे सच्चे देवता हैं शंकर जी,
1: अच्छा
0: ओम नमः शिवाय का भजन करो, और शंकर जी तो तीन लोक के नाथ हैं, साक्षात हैं, चाहे सत्य हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, शंकर जी
1: सही कह रहे हैं
0: सभी
1: आप
0: युगों में हैं। और
1: बिल्कुल।
0: जो अमर हैं, जैसे विष्णु भगवान को रूप बदल के राम को अवतार हो, राम को अवतार बदल के कृष्ण को अवतार हो, तो इनने तो थोड़ा परिवर्तन कर दो, लेकिन शंकर जी तो जागृता है।
1: हाँ, शंकर जी ने परिवर्तन कर।
0: हाँ, तो शंकर जी का जो ही कि छोटो सा मंत्र है,

0: शिवाय। अब गणपति जी की ये स्थिति है, गणपति जी के नाम अलग अलग रहेंगे अलग अलग समय में अवतार हुए, जैसे विकट गणेश, भक्तुन गणेश, मिसदंत गणेश, लंबोदय गणेश, भालचंद गणेश, हेरम्ब गणेश, कृष्णामा गणेश, विकट नामा गणेश, गजानन गणेश, गणाधिप गणेश। तो गणेश भी
1: अलग अलग है, सब
0: अलग अलग अलग है, सब
1: नाम ही है।
0: नहीं नहीं नाम है वो अलग अलग
1: अलग अलग
0: अलग अलग अलग अवतार भी है, अलग अलग नाम भी है।
1: अच्छा,
0: सत्ययुग में कुछ नाम से है, त्रेता में कुछ नाम से है, द्वापर में किसी नाम से है, कलयुग में किसी नाम से है, गणपति जी भी है। तो जो आदि गणेश है वो गणेश आदि गणेश है। अब जो माता पार्वती जी ने अपने महल से तैयार करे थे गणेश, वो जब माता पार्वती नहाने के लिए तैयार हुई तो पहरे पे गणेश जी का बैठा दो, तो एक डंडा लेके गणेश जी बैठ गए, बोले नहीं आई यहाँ कोई नहीं आएगा। एक बार शंकर जी चल देते हैं, तो माता पार्वती के पास जाने लगे तो उन्हें पता भी नहीं था कि शंकर जी ने कहा कि गणेश जी तैयार कर दे माता पार्वती ने अपने महल से। तो उन्हें भाई धोखा, तुम कौन हो, हे बाबा तुम कौन हो? अरे बोले हम शंकर जी, हमको पार्वती से मिलना है। अरे बोले नहीं नहीं माता पार्वती अभी नहा रही नहीं जा सकती। अरे बोले हमें मने कर रहे गणेश जी कहा शंकर जी ने। शंकर जी बोले नहीं माता का आदेश से नहीं जा सकती आप अंदर। गणेश जी ने कहा, शंकर जी बोले मुझे कौन मने कर सकता है? अरे बोले मैं नहीं जाने दूंगा माता का आदेश है। तो गणेश जी ने लेके डंडा लाए थे, शंकर जी ने सिखा दो। अरे नहीं जब ज्यादा घाल दे तो शंकर जी क्यों देते हो गए, और जाके नंदीश्वर कहा बताई कि भाई जी देखो कौन कहां से अटपका है। और बोले कर ले मुझे तो कोई मालूम नहीं। तो गणेश जी के पास नंदीश्वर आए, शंकर जी की गण, बोले तुम कौन हो कहां से यहां आ गए? अरे बोले माता का आदेश है नहीं जाए कहीं नहीं जा सकती माता के पास। तो गणेश जी ने मतलब शंकर जी यहां परास्त करो और नंदीश्वर का परास्त करो, माता ना उतरे। अब जब क्रोधित हो गए शंकर जी ने उनका शीश काट दो, नाराजी में त्रिशूल से शीश काट दो। माता क्रोधित हो गई पार्वती, जब माता पार्वती क्रोधित हो गई तो सारे देवता इकट्ठे हो गए। तब जो है सदी रखी के माता किस बात में आप शांत होंगे? बोले हम गणेश का जीव देखना चाहते हैं। तो फिर विष्णु भगवान जो है ऐरापत हाथी था कहीं, तो वहां से शीश ले आए थे कि जो पहला मतलब जो है जो भी जीव जंतु मिले उसका शीश लगाना है। तो ऐरापत हाथी को शीश ले आके गणेश जी लगाओ, वो तो आज गणेश जी की सूर है। और गणेश जी मतलब वो गणेश जी गजानन गणेश हो गए,
1: गजानन गणेश
0: हो गए। मतलब तो प्रथम पूजगढ़ राज है जो व्यापक सर्वत्र वंदना उनको आपको स्वीकृत हो गणपत। तो गणेश जी की पहले वंदना है सभी देवताओं से श्रेष्ठ गणेश जी, फिर वहां से हो गए। तो गणेश तो अब जैसे द्वादश शिव ज्योति लेंगे तो उनके स्थान अलग अलग हैं। एक स्थान तमिलनाडु में पड़ता है, तीन महाराष्ट्र में स्थान पड़ते हैं, एक उत्तराखंड में पड़ता है और एक झारखंड में पड़ता है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से होते हैं, और एक स्थान जो है वाराणसी में काशी बनारस में जो मतलब वहां विश्वेश्वर से इनके नाम से जाते। तो अलग नाम द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग है। तो शंकर जी भी मतलब वैसे बहुत बड़ी शक्ति है, ना तो एक जगह इनके स्थान है, द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग इतना समय है नहीं है आदमी के पास, उतना पैसा भी नहीं है कि इतना समय निकाल सके, इतना पैसा खर्चे। वैसे स्थान लेके हमने जो है पिताजी ने जगह जगह से उनकी बालू ले आए स्थान की, वहां का जल ले आया, वो पिताजी संग्रह करते रहे। फिर इसी तारम में और द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग की रायपुरा में स्थापना करा दी, अपने हाथ से प्रतिमाएं तैयार करी और द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना करा दी। आज एक ही जगह रायपुरा में द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल जाते हैं।
1: चलो बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको। आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के अपने सब जन के बीच में अपनी बात रखी, अपने जब बात बताई, इकलिया ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भैया।
0: नमस्कार, आपका भी धन्यवाद।
1: हाँ सर, देखो दोस्तों जो अपन ने बात सुनी है भैया ज्ञान सिंह यादव जी से, और इनने कितनी अच्छी बात अपने आज के कार्यक्रम बदाबंदली में करी है। अब दोस्तों यही क्रम में आप और कह रही है कि माता दिन भैया ज्ञान सिंह भैया जी की बातन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो दोस्तों मनोरंजन के लाने हमें ध्यान है, आओ सुनाते हैं एक बढ़िया सी फाखो जी, ये गा रहे हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी।

मानो लीजिए और अब उत्तरों की ओर।

झरुनाश्रे झरर पुल कड़के माता टीला जाऊं। जी कुल फुंदरू।

देखो दोस्तों, जब अपन ने फाक सुनी, फाक को आनंद लो, ये फाक खुंगा रहे थे भैया भूपेंद्र सिंह यादव जी। अब दोस्तों आज के कार्यक्रम पे था बुंदेली को इतनी समापन होवे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया खुद ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर ये मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

कब से जब से इस हसीना ने जब से इस हसीना ने मुझको आँख

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना। एक तरफ ये देवी है दूजा में पुजारी हूँ।

0: नहीं ना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यार मोहब्बत मत करना, यार मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यार मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्यली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल

ना कि उसने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान।

बहुत जनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी, बहुत जनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

0: देखें आप। हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप।
1: हो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेकन अनेक। हो तन मन की हानि हो भारी हैरानी।

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई हो या जून। अगर किसी को देना है उपहार में तो ऐसी बात दे दो जिसमें समझ में आए। कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी।

की अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बनाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी,

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली।

यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखो तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे

0: से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। और लूजी नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ, आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चंकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी? मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया,
7: पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया। लो

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है और आज मैं, मम्मी और शरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। वो बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। भाई वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गोगी, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुनो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगी गुगी, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों खेलोगे ना तुम मेरे साथ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आ गया समझ। चमकी मैं बताऊँ?
2: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो। क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला? एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
3: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा, बताओ क्या है जवाब।
3: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना। अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है।
3: यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
2: कल हमारी गली में पिकनिक थी। सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियाँ क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय मेरा नाम है चमकी और आप?
4: अब्दुल रहमान।
2: अब्दुल रहमान जी पौष्टिक खाना क्या होता है?
4: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
2: ओ, और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां उगती हैं?
4: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
2: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
5: मेरा नाम शांति है।
2: शांति, सुमित और उसके भाई बहनों को कौन सी सब्जी अच्छी नहीं लगती?
5: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
2: हाँ सिर्फ आलू? हाँ फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
5: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
2: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय आपका नाम क्या है?
6: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
2: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
6: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
2: अरे वाह बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियाँ खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
7: पालक।
2: ओ फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
7: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
2: हाँ मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियाँ कैसे खिलाती है?
8: मैं वैष्णवी को पालक कहानियाँ सुना के खिलाती हूँ।
2: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियाँ खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं।
6: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए इनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
2: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
3: बाय। मजा आया ना दोस्तों।

0: दोस्तों, मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था, यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई है भाई, हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है, जैसे तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं, तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं। और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि

0: वो हरी पसंद हरी सब्जी पसंद नहीं करती, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते
1: हाँ
0: कुछ
1: हाँ
0: लोग।
1: जी, तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहती हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिससे तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं।
0: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है जैसे लौकी है, तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए। और दूसरी तरह जैसे पालक पालक है, तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर में मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज़्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पनीर पनीर से पालक पनीर ही बनती है ना, तो वो वैसा ही बना सकते हैं, तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
0: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही हैं, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते हैं, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है, तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए, क्योंकि उनको आहार मिले,
1: जी
0: पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा कि तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियाँ देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनाई बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत हम करा देंगे। हम तो हैंगे भैया आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेके हाजिर हैं आप सबके लाने कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत। जी हाँ श्रोताओं, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत ये दो ही चीजें अपने तय की बहुत ही ज्यादा मशहूर रहती हैंगी। और आप सब जने जानते हैं कि बुंदेलखंड की चर्चा हर जगह होतेगी, जब खूबसूरती की बात करी जाए या फिर विरासत की बात करी जाए या धरोहर की बात करी जाए। और ऐसे ही में अपन और क्या कर रहे थे एक कार्यक्रम के माध्यम से, जो अपने साथी केवल जिनने नाम सुनो है गो कि अरे फलानी जगह ऐसी जगह हैगी और उतर हमें जाने है गो और उतर के बारे में उन्हें कछु पतो नहीं है, तो अपन और कोशिश कर रहे थे कि एक कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथ है ना कि अपन सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए, और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो यू के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन एक कार्यक्रम से आज आपको ले चलत हैंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो उके बारे में भी अपन और कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काय के पहुंचे में तना टाइम भी लगे होते, ठीक है। तो चलो अपन सैर करवे चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

सुबह और मिलके न धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान।

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोकगीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है।

0: और पार्वती की जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ सात झरने हैं, सात झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, तू से मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा के पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया लेकिन पट 9 दिन में, 9 दिन की बजाय 3 दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
0: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं। और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है।
1: बिल्कुल।
0: और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है, जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं। जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही और जन्म कोटि अघनाशे हूँ तबही। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ जो निरंतर गति में है। और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली, सिद्ध स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है। और यहाँ पर 22 से 51 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी है, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं, सब दक्षिणावर्ती हैं। और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी से अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में? कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पुताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासन के या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया। और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लित बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता

0: और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
1: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपका शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
0: तो आप उन्हें तय के हो?
2: यही के।
0: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करत यहाँ जन्म लेके ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहे चाह रहे यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं। देवी जी के उनकी कृपा से हमारा सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से कटता है।
0: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
0: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे, मतलब ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र बोल रहे हम देखे, और बहुत बड़ा है मंदिर।
0: अच्छा।
2: और उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है की बहुत अच्छी जगह है।
0: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
3: तो साथियों, अभी हमने चनेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सो सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आप दोस्तों सुनते ही कहानी को लेते ही कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कोते राजन के कुंवर और एक हते बानिया के लड़का।
2: अच्छा, मतलब एक हते राजा के कुंवर,
1: एक हते बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ।
1: अच्छी तरह से रहे उनकी दोस्ती।
2: हाँ।
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम का, तो के पढ़ लिख के जो भी आ गए सुबह को चले जावे।
2: दो ही के दोस्त,
1: दो ही के जो शिकार भी अपने घूरो मस्के, भी अपने घूरो मस्के।
2: हाँ।
1: अब जब वन में पहुँच गए
2: तो
1: जा शिकार खेली, बस शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुँच गए। अब कल को दिन बर्फी तुमने फिर कर गया।
2: अच्छा।
1: कल के दिन में भी बोले बोले कल बीजन बोले अब बीजन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा।
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमें ससुराल देते थे। अब राजन को तो बस बीजन हती अपने बानिया कितना सिकत बीजन।
2: अच्छा।
1: हो भी है बादशाह, बीजन और बादशाह दोनों जने हो। कह के राजा हो बादशाह। बीजन ने जिस बार मार बनवाए, दाढ़ी फाड़ी बनवाई, बार फटवाए, कल कवैया कहाँ की लानी छतरे कल ससुराल हो जा रहे।
2: अच्छा।
1: अब जब नाव घेगो से नाव को रख पतो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे,
2: जा सही के
1: नाव को सब पतो है। नाव को तो राजन की कुमार की ससुराल को पतो
2: ऐसा।
1: बस अब बीजन के बार बन गए। अब राजन के बादशाह के बनने, तो बादशाह के बार बने। तो बादशाह बोले बोले कर ले कब बोले कर ले कही राजन के राजा बोले कर ले बीजन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम कितने चले जावे। अरे बोले कर ले राजन के राजा, आप किसी ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं।
2: अच्छा।
1: सब भी तीन जने हो गए।
2: अच्छा।
1: के नाव हो गए, बादशाह हो गए, बीजन हो गए। अब तीन जने की दोस्ती हो गई। बस अब चले ससुराल के जाने। तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो के जब बीजन की ससुराल को गल गई वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई।
2: अच्छा।
1: गली में से बटी उन्हें लगी प्यास, तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो वीरन पिया पानी। तो वीरन गौ पानी पीवे के लाने तो बने बीजक बाँचो।
2: अच्छा।
1: बीजक बाँचो वामे सो में गली अलग अलग। वीरन हो बदमाश, वीरन बदमाश हो।
2: अच्छा।
1: तो वीरन ने का करो किस्ता के पानी पी के बावरी में और वह बीजक को भरा दो।
2: ले उसका।
1: अगर हमारे आगे जब बीजक को जो राजा पानी पी भी आ रहा तो जब बाचे ले से संग छूट गो। इसे के हमारे जी ससारे चलेंगे
2: चलेंगे
1: तीनों जने,
2: तीनों जने।
1: जा पे बीजन बदमाशी के रहो। तो बस अब राजा पानी पी भी गए। तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में हेरी, सुबह में बीजक में गिराव लगो। तो राजन ने अपने खोबन की उलीच उलीच के
2: धोदाओ
1: धोदाओ और फिर उगे बाँचो बाँचो बाय सुबह ने उनमें प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन के कुंवर को रास्ता गई और जा बीजन के कुंवर को रास्ता गई। दोनों जने तो बोले कहले क्यों बे बीजन, बोले कहिए राजन के राजा, बोले तू बहुत बदमाश है, बोले कहले पुरखन को बीजक तेने मिटा दिया है, हट कर ले कि हम अपनी ससुराल देते हैं। बोले कल उनकी शर्तें लग गई।
2: अच्छा।
1: बोले कल जो पहले आज विदा करा के वो जज बाउरी पे ठहरे क्या दिन कितने को बीत जाए।
2: सही सही।
1: तो बस बेहती सब भी अपनी ससाय चले गए और भी अपनी ससाय कर ले जी सताई रखा नाव। बोले कल जी राजन के संग चले।
2: सही है।
1: अरे हमारे वर्ग के संगे का चले, हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी और हेल्पर चलते हैं। तो राजन की कीमत और सताई का कद्दू जने जा रहे गिर अपने सतारे चले रहे। अब सब राजन के कुमार जा रहे से बन कजली में पहुंची तो अब राजन की कुमार को लगी प्यास। बोले कल्ले सताया कब बोले कल्ले के ये राजन के राजा कल्ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर शरीर से प्राण निकले जा रहा है, इसे पानी को देखो। बोले कल राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी, अपन वन में हैंगे। बोले कल्ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गा के। बोले कल्ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़िए देख के भी लम्बे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो गई चढ़ी तो ये कुत्ता दिशा में बगली मर रहा है। तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है, पानी इधर होगा
2: बिल्कुल।
1: तो बोले कल राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है, उत्तर दिशा में बगली मर रहा रही और बिन पानी की बगली नहीं रहती, पानी जरूर। चल चल ले जा सुबह लोटा घड़ी ले आके चल जा। अरे खुली जाए सुबह जन्म दिया पाई खुली से जीत गए कि आने फिर बाहर आराम से बिन नगर चले गए। तो उतर काकस्ता हाथों के जानवर लड़की राजन को भी आई थी वो नदिया में स्नान कर रही।
2: अच्छा
1: वो नदिया में स्नान कर रही थी। सुताई अक्का ने कहा करो झटपट पानी पी के और मचो सचो भर के और पहुंच गए। बोले कल्ले सताई का क्या बोले कल्ले ये राजन के राजा। बोले कल्ले उस तालाब में पानी है सो ठीक है तुम ले आया। बोले कल्ले महाराज जाके ना पूछो पानी पी लो तुम। बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया हो ऐसा जल्दी हो थे को कि मचो सचो भर के। बोले कल्ले महाराज कल्ले वो तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सपर रही है तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तो हम तो सब मचे सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे। अरे बोले कल्ले बगरा भी तो वो पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद नहीं वो कल्ले सुधायक का बोले कल्ले कहिए राजन के राजा। बोले कल्ले इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुँह बोले कैसे
2: सही है
1: जब पीछो करे अपन ताए को और मुँह करे ताला ताए को। बोले कल्ले कहो उन्हें कही

0: नाव कक्का ने कही के
1: नहीं, राजन ने कही जावा,
0: राजन ने कही जावा,
1: राजन ने कही जावा। उनने फिर कही उनने, अब्बा बोले जल में ठाड़ी जोन।
0: अच्छा,
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही,
1: जो नहा रही बा बोल रही है।

0: अयक्का बोले कल्ले राजन की राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाले
1: बताओ
0: हैं।
1: सही कही
0: बोले कल्ले नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ
0: भूले मोसा।

0: गलिया लेखो बाता दियो रे सो लगे काहू के हरिद्वार जी। इन्हें गली बता दो सो काहू के द्वारे लग
1: अब पहुंच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते हैं अगर बता दिए अब जल के भीतर हुई। अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए इनको बदन शरीर है कैसो मुंह करे मायक हूँ और पूछते इंताक हूँ कई के अब जाइए से बताया सुनने के बाद माँ से बोली

0: या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: बाने मिली ना बताई ना बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पास अभी कर रही बस साहब उनने किसी गली से पूछ ही ली।
1: हाँ।
0: गली पूछ के उनने घूरो बढ़ाओ तो गांव की लानत तैयार हो गई। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जात तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्ली सफरों और सफर खूर के और बाप ने गेल चली जो

हटी से जाते भवन द्वारे अक्का को देखो तो ससुराल सुपने द्वारे उनने अब पहुंची घरे पहुंची घरे सुख गई घरवाओ को बंदो अब भाभी से बोली भी।

0: रहेगी।
1: बिल्कुल, क्या तुम
0: भाभी ने कहा ऊंचे कनेरा नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
1: ऐसे,
0: और तुम्हारी आ गए चाला।
1: अब लुबग्गा आ गए तुम
0: लुबग्गा। उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही। सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बनाने के लाने तैयारी की। तैयारी करी अब इन दोनों ने करी चला।
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अब भोजन नहीं करने भोजन नहीं करने इसके यहाँ वाला
1: सही
0: है जी।
1: सही कह रहे।
0: अब खुला खुला थे अभी नहीं खुलो हमें तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की। सुबह सवती सुनने गंजन की भोजन बनाए भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन के लाने। तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सुनने चाहे एक लो चाहे खाई हुई चाहे दो खाई हुई और वहां से बने ठना ना जवाब ठोको।
1: अच्छा
0: ठोकने ठोकने ना तो भेज कैसे खोले बाबू।
1: हाँ, सही है।

0: सौन्यता की सरकार के मोए कत्ती अब भी खुल गओ के जय है जय।
1: हाँ सही कह रहे
0: जय है जब बाबा ने बात खोली सो बोली समझ गए सो उनने माँ ताठी मारी सरकार के और बस सोचा जा काने पर झटपट जो कछु राजन के की तुम बाप बांधी और बाप नहीं बांधी और बस चाची मारी जो कर कमे लग गा के कल काहे काहे राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल महाराज मैंने अपनी ताठी धोई वो आपकी धोई और फिर मैं आऊ
1: जैसे टाइम लगता
0: जैसे टाइम लगता बोली कल सुन ले कल सुपता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो ये इस पापन को मिलवा जाने इसको मिलवा जाने तो बस दिया कि सो तैयार हो गए जहाँ से करा उनको तो उन्हें भज्जा घूरो कसो सो अब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चावन पीटने कस रहा
1: अच्छा
0: वो पले चा पीटने के तन क्या है जो ऊपर का परेचा नीचे कस दिया जाए तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे अब अति बेसु निकल के और बस फिर कड़ी तो भाभी पूरा परोस की जनी ने दोहा बनी रेशम डोरा पाटे कोरे जले दियो रे चाटे का

0: नहीं देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर
1: जाए
0: गांठ पर ये जाओ मैं
1: नहीं गए
0: उनके तो रुक गए जो पड़ोस की
1: ने पड़ोस की ने कई जवाब
0: पड़ोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर वेर को संग है
1: सही है
0: बढ़ गए जाओ तो उनने हकीसो जैसे कछु पुटिया पर मूत की वही रानास में ले गए
1: फिर कमाई खोन पुटे पार या ले गए
0: मैं कहूँ वही जहाँ उनकी रानास थी फिर पहुँच गए भाई सतखंडा पे पहुँच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन भी है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन में ले जाए तो भोजन उनमें लगा थारी को भी पहुंची तो लगा थारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पहनती भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन गई और असम दोहा दे रही संत।

अरे भोर जी, अरे अगर नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना उनसे, लेकिन बाने फिर दो जाकर कहो।

कोई काम नहीं। अरे खोलो का, अरे किवार जी, उन खोलो कंस के बार, लेकिन उनमें नाव से कही के किवार नहीं खुल गई। अब जो जो है सुनो साधु ने, साधु ने सुनो दोहा, साधु के रामायण से। हाँ।

0: कहे जी उन्हें शंख बजे से साधु जगे बम घले रे झूठ। अगर इतने में के बम घर रहो वो नहीं जग रहो तो कुछ कब पूछे
1: सही है का हो रहा
0: का हो रहा
1: कत्ते दुनिया भगत जागे रु बिछोना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो पड़ोस में पतो होगा रानी राजा के पास मिल भी गई। अब फिर की दो हाँ कह रही हो ऐसी।

से लड़की भाली रे सो मेरे पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासों का काम की हती तेरी कूखन बांझई हो जाती, ऐसे सब कुछ जाए के लड़की होती तो परोस मिड़ी पे ब्याह शादी कर देती। तो ये तो गड़िया है ना यार, सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मैं रात को समझ गया कहाँ जा रहा है जो सवेरा हो सोने घोरो मस्को चलिए। तो ससुर साहब ने कही, करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो।

हम आपकी स्वागत कर रहे हैं और सब बात को बाहुलाओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी विदा कर रहे हैं। ठीक है, जो भाई बिहती है जो डटे गए, खाना खाओ, खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदाओ उनकी। कई बार उन्हें खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखा था, खा पी के जे घरे चलेगी। बस आओ अब बिहती सो अब पीना हकावे बारे हकी तो जैसे गांव के बारे करी तो उनमें मार जताई तो भी भग गए छोड़ के। अब खुद उनने हकाई, अब सुताई अब काल है कबाजी ने हकाई। सुबह हका के वो बस अब कहीं ऐसी और चली हुई तो शाम हो गई से एक बमूरा को पीड़ो रहे से उतर बस गए। शाम हो गई से बस गए, बस के भी अब बोले कल सुनो सुता का बोले कल का कल्ले ही पापन को नहीं छोड़िया नहीं यही रुकता है। अब्बा सुन रही थी, बस सुन रही थी सुबह ने गई के ठीक है। सो सताई अक्का से गई के सताई अक्का ऑर्डर दौरा नहीं है के पति लगाओ। सो सताई अक्का गए से तीन पात्र ने लगाए, एक अपन को, एक राजन को, एक रानी को। क्यों बे ये तीन पात्र ने कहा खोलिया? बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमाए तो रानी की फार के मार फिर। अब बस पातर लग के आई तो खाना खाओ, खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं, इसे का करें से जिस सुबह घोड़े की पछाई की जो ये रहती ये बजट बात बडोर बंदी की तो बस छोड़ के बाने पीने से मार लाई बडोर को कि ये भगे तो जब ये टूटे समय आंख अगर हम सो गए आंख खुल जाए तो हम इसे कचू के ले। सुबह सुनने थी सुबह घोरो भंसा इलाज भाई को बड़ा सुबह तनो वो तनी बडोर कहीं दूर सो नेक चावा को ठो को घोरी में सुबह दूर सुनने कही रानी मैं

चैनल दिखती हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न बई गांव के रहे, अब यीशु नलवारे कैसे बेटी से चले गए भी अपने भवन को चले गए। अब रानी ने अति सुबह पी नस्खू भी घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी पी नस्खू हकाऊ थे रानी तो हका जो वैद्या से कचुवती सो राजा गिलंद की बाग में जी जा रही सुवन ने भज्जा घर वन ने ना के चूपी माए की बोलनिया चूपी बेहती जो रानी वो तो मालिन हती सो मालिन गोली गोली कर लेगा ये कौन कहाँ की पाप है नारी कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन खुद दे बहु में भीतर कार में बाबा में बीरा दे दे अभी तो राजन की बेटी थी उसे कछु मोरन को कछु टूटो तो जाई हकी भी तो अपने इंतजाम में अपने कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सुई सुई कछु बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान सो एक दिन अब उनकी बेटी हती राजन की यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी को जमदीप जेमती नाव तो बेटी को सो बिन बे फूलन की तुला तो लगती हुआ सो वह मालन रोजीना डाली लगावे और फूलन को ले जावे सो राजन ने हती सोची के अब मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमे आए सो बगीचा घूमन गए भी सोचे बार राजन की लड़की रहे सो राजन ने सोची कि ये तो काछी माछी की तो या है नहीं है, है तो को राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घर पहुंची घर पहुंचे सो घर पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ सो उनने डाली उन्होंने लगाई अब बादशाह ने हती सो राजन की पियन नहीं होती बाबे नहीं होता कहूं कहूं अबे नहीं होता पियन को सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह की सो अपने उन्हें थाली लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रहे बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की सो बिन ने सोची अगर बिन तो हमारी खुलवा लिया उसी बन में ना छोड़ी उसी भाई ना करती हवा सोने हर सांस लगी सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरकसा है राजन की बात में कोई खरकसा है सो नाव से पूछी जावा बोले क्यों खवास रखा बोले कले कहिए राजा कले कारण का है ई को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कले ये रानी को बन में छोड़िया सो उनने अति सो घोरो उनने सजो और बीरम ने सजो और पहुंचे बोले कर ले चलो बताओ कि कौन छाड़ में छोड़ फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह जीत गए दोनों जन नाव नहीं गए वे दो ही गए सो बोले कर ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी वह धर ली सो मालन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद के बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही ठीक है उतर जाके इनने का किस्सा करो कि डीरा दो जन में जैसे उड़ने भैया मालिन ने उन्हें घर आए बोले कल क्यों रे कहाँ के हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बाद और हमारे राजा सुन पे तो तुम्हें जान से मारा ले हाँ सुबह आराम से मालिन को साड़ी तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा गिलंद की अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है तो कोई जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर दिल ठाड़े कही सो मालूम है कि राजन बोली कल दो घोड़े वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनने सब नाश करता बगीचा को सो उनने छड़ जा चलिए तुमको राजा बुला रहे बोले कल हौसा जब तभी ऊंची हती
बिल्कुल की। और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी ले के, बोले उनकी गैल में सलाह हो गई, बोले कल तुमसे बात करे से तो मूर्खा थी जो, और हमसे बात करे तो हम मूर्खा थे। सुबह गए सो राजन की बगल में एक बोले बैठो जी बोले बैठो। अब उन हतो एक बीजक राजा गिलन जन कि अगर जो बीजक जी न पहुंच जाए हम लड़की की शादी उसी के साथ कर लेंगे। तो अब उन की सो दसला हो गए वह सका से काम लगाओ। अब वो रानी ने डीरा जाओ डीरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलन ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कल नहीं ये राजा गिलंद को बाकट चलिए और जो मकान गिले चलिए। सुबीर ने कही तो ठीक है सुबीर जो भज्जे जो काम लगो सुबह अपनी मजूरी खोने की जावे जावे। सुबह रानी जो बबीती अति से छाजी पे दातन कर रही थी सुबी जग लाई थी बबी जग बबई लोटा के कर रखती दातन वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक खून गई जो बादशाह ने बाँच ली बीजन बांस ले बादशाह ने बीजन ने बांस बोली कर लड़की अरे बोली कर लड़की कहते हैं तसला पटकत पटकत वो तो सार पांच एक ही पड़ रही और तुमने पहचान नहीं कही कछु वक्त तुम ना तुम सानो और हम ये डारा सुबह गए डारा सो आराम से गए डाल भी के लाने स्तनक तसला में से गिला पहुंच के वो इमेज दाओ वो बेटी में दवा में जो राजा गिलंद की लड़की तो उन्हें अति सो अब जो खिलाड़ी है तो उन्हें वो लोटा दाओ वो लोटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले लाओ ये गेंद की बल्ला के अवल्या लोटा हो गया।

0: उसने फिर भेजा छड़िया पकड़ लिया सुबह जब गए पकड़ा देख दाग के मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर क्यों इनसे बोलत कैसे हैं बोले कल्ला महाराज उतर नहीं है मजबूर संजू तो जो राजा पड़ी बोले कल्ला यार पड़े बोले पकड़ लिया बोले कल्ला आ रहा चलो अब दुनिया मिल गई थी वो बीजक उनने वहां से लाओ पूरा कर ये कब दो मिल रही दो मिल रही में सुबह के लेकिन भाई उनकी सलाह तो बात गई कि अगर तुमसे राजा बात करे तो हम उड़ काट ले हमसे करे तुम काट ले सुबह राजा का उस बात में कर गए चुपचाप बैठे रहे दरबार में भगया एक दिन आ तो बोले मेरे को कि आगे पहुंचे गए सो राजा ने कही बोले कर ले कवि साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो बोले कर ले फिर वह लड़की की शादी करी उनने उनकी रानी ने हती बात तो
1: देखो दोस्तों या तो अपन सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खो सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ अब एक संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

0: रेडियो बुंदेलखंड के सभी श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौनसो कार्यक्रम लेके आए हैं, जी को भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैयान की बातें करे और सुने, और एक क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करे और जी अपन को कुछ बताए। लेकिन ई के पहले अपन सुनत है एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम की पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: हाँ तो भैया अबे सुनो, अपन सज्जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जू ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन का गाँव के सब बताओ है। और अपन सज्जन ने सुनो है, अब अपन बात करत हैं राम गोपाल कुशवाहा जू से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन काके रे विवाह दादा
2: क्या ना के पूरा पटक गया हम के ना गुलाटी कमगा कैसी नवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे तरह
2: ये हल्को हल्को काम कर अपने ढो बच्चे देखे ना तुम्हें
1: और
2: का वर्कर हम का बस किए काम वाम हम कहते नहीं।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से तो कसके विचार जब जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।

0: आप जो बता रहा था कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी देखते हैं लगा का परेशानी देखते हैं आउती है अपन का
1: बुढ़ापे में तो देखो ना खाना मुड़ा एक बात देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरे फिरार हर एक बात की मतलब मुश्किल देखा दो अगली बात
0: और वैसे वो समस्या है अपनी
1: वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है हमें नहीं आया हम खा रहे हैं
0: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी जाओ
1: आओ बैठ भी जाओ नहीं आओ थे तुम
0: साथ में
1: अस्पताल जाने
0: और अपने सेवा खुशामत के बारे में आप क्या कह सकते
1: सेवा खुशामत सब करा चुनगे जनाब जी बैठे अब बैठे भी है मतलब ठीक नहीं है चला फ्री कर लेंगे तना।

0: आने दे खेल रहा।
1: अच्छा और अबे आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं आया थी।
0: हाँ खाली जी।
1: हाँ जैसे का आप अब बुढ़ापे की
0: बुढ़ापे मतलब
1: माना दिक्कत है आदमी का।
0: दिक्कत तो देखेगा नहीं होती नहीं है तुम्हें जो कागज है जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी है दिखा कागज नहीं बांस पाऊ मुझे दिखा सकते।
1: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सका तो खावे पीवे की आपकी का है।
0: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही मतलब जो घर में है तो खा।
1: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में वे की में का अंतर है।
0: चलो इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी पापा जी जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी पहुँचा रहा हूँ आदमी हमारे बाल बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जटाने न मिल गए दीवानी न मिल गए ऐसी समस्याएं मतलब अभी के समय में।
1: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चजी अब सब
0: जब जो हो चजी के शांति हो चजी प्रेम हो चजी सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं है। प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति न आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति न आए।
1: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छो हो सका।
0: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदार हो काम प्रेम में उवर का जो काम नहीं कर प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
1: लड़ाई झगड़ा ना हो जाए पैसे पैसे टका खर्च ना हो
0: जाए घरे पैसा रहे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं कर।
1: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करे चजी और कैसे रहे चजी आपका कंचाओ सब जनन से आपको काके वो है।
0: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करे
1: तो वही बात तो, बड़ी बात तो,
0: मतलब
1: शुरू से आप बताओ
0: तीर्थ यात्रा ना कछु।
1: हाँ यही बात है आप यही बात पूछन जाओ शुरू से बता दो आप आप काके वो चाहते
0: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत रहे प्रेम रहे लक्ष्मी जी रहे सब मतलब नहीं की रूप है जो बाप मताई को ठुकराओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब चली जाइए तो मतलब
1: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे।
0: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं करते जाकर है जो मतलब जब क्योंकि चले जाओ पैसे आके चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाते कहाँ जा रहा है क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है पेंशन बन जाए तो अच्छी बात है।
1: और का के वो चाहू था
0: जी उचाउ के आराम चाहू बस मिल जावे पेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने बाल बच्चे को समान खाने दिए तीन चार सौ महीना मिल गए तो अपने उम्र खर्च चलाओ थे।
1: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है। और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे राखबे चारों धाम कर हैं। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हती सो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताए तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जे अपने और चौक पुरा रही हैं और शुभ संदेश की बातें कर रही हैं और संदेश दे रही हैं। तो भैया अपन सुनो और सबई पंच भैया सुने।

तो भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाए। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

हाँ तो भैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम, सुनो जी का कह रहे, ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आउत है ये कार्यक्रम को सुनो जी का कह रहे। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत होवे तो हमें जरूर बतावे, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावे भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से, तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हुई, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को, तो नमस्कार।

सुनो तो जी काके रे, अपन खां जी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काके रे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार और कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरे गीत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? दीनदयाल बोल रहे हैं सर।
1: हाँ दीनदयाल भैया, कैसे हैं?
2: ठीक है सर, बढ़िया है।
1: बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: सर सुनवा लीजिए, वो गीत है ऊंचे पहाड़ पे मैया बैठी रतनगढ़ वाली।
1: ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: हाँ जी सर।
1: चलो भैया, दीनदयाल भैया हम आपको जरूर सुनवा है जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार सर।

0: हेलो,
1: नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
0: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है, और सब ठीक बहुने बहुने वाने हो गई, पानी आने लग रहा हो।
1: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो? प्रियंका
0: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
1: बुलबुल जी की आवाज में?
0: हाँ,
1: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बता पाए आप?
0: एक गीत कोई गाओ तो सुना दीजिए थोड़ा।
1: अच्छा चलो
0: बोल
1: ठीक,
0: तो यार, हाँ बोल, याद नहीं आ रहा है।
1: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए हैं।
0: ठीक है भैया, जय राम जी की।
1: जय श्री राम, जय श्री राम।

भगवान शंकर की बारात पहुंच गई महाराज हिमांचल के। जब सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार

ना दीजा भागा। भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है देखिए। बिखर गया परिवार, बात जा बनी बनाई में, और सच जाने त्रिपुरारे अपनी हवा हवाई में।

अंशन फल दिया। कहना है कि मांग लाल है बिंदिया भाल है कंगना कलाई में और चंद छवि मुख चंद्र विराज गोरा।

0: बोले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: हेलो
2: हेलो, बुंदेलखंड नंबर 1950 है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाव से सतीश साहू जी?
2: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
2: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है।
2: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
2: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।
2: नमस्ते।

0: माताजी भैया को नमस्कार है।
1: नमस्कार नमस्कार, कहाँ से?
0: मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से भैया।
1: बिल्कुल बाबू भैया जी, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
0: हमें सर वो वाला भजन सुनवा दीजिए।
1: कौन सा?
0: शांति मन से जो कोई प्राणी नगर ओरछा आवे
1: जी,
0: वही वाला सुनवा दीजिए।
1: चलो ठीक है बाबू भैया, हम आपको जो गीत जरूर सुनवाते हैं।
0: धन्यवाद भैया आपका।
1: बिल्कुल, आप ऐसे चलते रहोगे बुंदेलखंड। ठीक
0: ठीक है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: साथियों, अगर आप भी सुनना चाहते हैं ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को। साथियों, हमारा नंबर है
1: 9425147126।
0: बिल्कुल साथियों, तो उठाइए फोन और लगाइए हमारे इस नंबर को, तो सुनिए ऐसी ही प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।

कार्यक्रम मेरी मुंडली मेरे बीच से अपने दोस्त माता दिन खुदो जाने की अनुमति। साथियों अपने तपने फिर हुई है मुलाकात एक डेरा पे एक कार्यक्रम में। जब तक के लाने नमस्कार।